0: இந்த அளவில் நிறைவுக்கு வருகிறது இன்றைய சக்தி கூட நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில வந்த அத்தனை விடயங்களையும் கேட்டு பயன் பெற்றிருப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. இந்த நாள் உங்கள் வசமாகட்டும், நினைத்த காரியங்கள் எல்லாமே கைகூடட்டும், நல்லதே நினைங்க நல்லதே நடக்கும், சிரித்த முகத்தோடு செயற்படுங்க. தொடர்ந்தும் கலியுகத்தில் சக்தி எஃப்எம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையினை தொடர்ந்து வீக்கெண்ட் பிளாக் பஸ்டர் வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சியோடு ஷெல்டன் ஆண்டனி இணைந்திருப்பார். மீண்டும் சந்திப்போம், அதுவரை விடைபெறும் நான் என்று உங்கள்
1: அன்பின் ঢাকা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিক থেকে অস্থায়ীভাবে ঘন্টায় 45-60 কিলোমিটার বেগে দমকা থেকে ছোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে 1 নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আজ ঢাকায় সূর্যোদয় হয়েছে 5:15 এবং সূর্য অস্ত যাবে 6:35। শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার। চাঁদপুরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ। রাজনীতির নামে কোন গোষ্ঠী যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি ষড়যন্ত্র রুখে দেবে জনগণ, বিশ্বখাল ও খোর্দখাল পুনঃখননকালে বললেন তারেক রহমান। রাষ্ট্র সমাজ পুনর্গঠনে চলচ্চিত্র সহ সৃজনশীল খাত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, মন্তব্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর। এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে টোল আরোপের পরিকল্পনা করছে ইরান। দ্রুতই শান্তি চুক্তিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হলে সাধারণ খারাপ সময়ের মুখোমুখি হবে, খারাপ সময়ের হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের। খবর শেষ হল। আমাদের
2: এতক্ষণ শুনলেন বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারকৃত সংবাদ।
3: সাথে 90.4